मिल आप गवाइया नदर करे प्रभ आपणे गुण अंक समावै नानक मेल न चुकी लाहा सच पावे गौड़ी मोहल्ला पहला गुर प्रसादी बूझले तो हुए नबेरा घर घर नाम निरंजना सो ठाकर मेरा बिन गुर शब्द न छूटी है देखो विचारा जेला कर्म कमावही बिन गुर अंधियारा रहाओ अंधे अकली बाहरे क्या तिन सिव कही है बिन गुर पंथ न सूझी कित बिद निर्बही है खोटे को खरा कह खरे सार न जाना अंधे का नौ पारखू कली काल विडाना सूते को जागत कह जागत को सूता जीवत को मुआ कह मुए नहीं रोता आवत को जाता कह जाते को आया परकी को अपनी कह अपनो नहीं पाया मीठे को कौड़ा कह कड़वे को मीठा राते की निंदा कर ऐसा काल में डीठा चेरी की सेवा कर ठाकर नहीं दिस पोखर नीर बरोली है माखन नहीं रीस है इस पद जो अर्थाए ले सो गुरु हमारा नानक चीने आप को सो अपर अपारा सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया गुर कृपा ते बूझिए सब ब्रह्म समाया राग गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला तीजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन का सूतक दूजा पाओ भरमे भूले आवो जाओ मन मुख सूतक कबे न जाए जिचर शब्द न भीजे हर कह नाए रहाओ सबो सूतक जेता मोह आकार मर मर जमे वारो वार सूतक अगन पौने पानी माहे सूतक भोजन जेता किच खाए सूतक कर्म न पूजा होए नाम रते मन निर्मल होए सतगुर सेवे है सूतक जाए मरे न जन्म है काल न खाए सात सिमर सो देखो कोए बिन नावे को मुक्त न होए जोग चारे नाम उत्तम शब्द विचार कल में गुरम को तरस पार साचा मरे न आवे जाए नानक गुरमुख रहे समाए गौड़ी मोहल्ला तीजा गुरमुख सेवा प्राण आधारा हर जीव राखे हर जीव राखो हृदय और धारा गुरमुख सोज सोभा साच द्वारा पंडित हर पड़त जो विकारा गुरमुख भोजल उतरो पारा रहाओ गुरमुख विचो होमे जाए गुरमुख मैल न लागे आए गुरमुख नाम वसे मन आए गुरमुख कर्म धर्म सच होई गुरमुख अहंकार जलाए दोई गुरमुख नाम रते सुख होई अपना मन प्रबोधो बूझो सोई लोक समझावो सुने ना कोई गुरमुख समझो सदा सुख होई मन मुख डंप बहुत चतराई जो कुछ कमावे थो थाए ना पाई आवे जावे ठौर ना काई मन मुख कर्म करे बहुत अभिमाना बग जो लाए बहे नित ध्याना जम पकड़िया तब ही पछताना बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई गुर प्रसादी मिले हर सोई गुरदाता जुग चारे होई गुरमुख जात पत नामे वड्याई सायर की पुत्री बिदार गवाई नानक बिन नावे झूठी चतराई गौड़ी मोहल्ला तीजा इस जोग का धर्म पढ़ो तुम पाई पूरे गुर सब सो जी पाई एथे अगे हर नाम सिखाई राम पढ़ो मन करो विचार गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ वाद विरोध न पाया जाए मन तन फीका दूजे पाए गुर के शब्द सच लिवलाए होमे मैला इव संसारा नित तीर्थ नावे न जाए अहंकारा बिन गुर भेटे जम करे खवारा सो जन साचा जे होमे मार गुर के शब्द पंच संघार आप तरह सगले कुल तार माया मुहे नट बाजी पाई मन मुखे अंध रहे लपटाई गुरमुख लिपत रहे लिवलाई बहुते भे कर भेख तहारी अंतर तिसना फिरे अहंकारी आपना चीने बाजी हारी कापड़ पहर करे चतराई माया मुयत भरम पलाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रते सदा बैरागी गिरही अंतर साच लिव लागी नानक सतगुर सेवे से वडभागी गौड़ी मोहल्ला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा तिहते उपजे देव मोह प्यासा त्रै गुण भरमे नाही निज घर वासा हम हर राखे सत

हर का दास नीच कुल सुने तिसके संखिन में उदरे कोट मज्जन जाके सुन नाम कोट पूजा जाके है ध्यान कोट पुन सुन हर की बाणी कोट भला गुरते विद जानी मन अपने में फिर चेत बिनस जाए माया के हेत हर अविनाशी तुमरे संग मन मेरे रचना राम कै रंग जाके काम उदरे सब भूख जाके काम न जो है दूत जाके काम तेरा बड़ गमर जाके काम होवे तू अमर जाके चाकर को नहीं डान जाके चाकर को नहीं बान जाके दफ्तर पुछे ना लेखा ता की चाकरी करो विशेखा जाके ऊन नाई कहू बात एके आपने कह भात जाकी दिष्ट होए सा निहाल मन मेरे कर ता की काल ना को चदर नाई को मूड़ा ना को ही नाई को सूरा जित को लाया तिथि लागा सो सेवक नानक जिस भागा व गौड़ी महला पंजवा बिन सिमरन जैसे सरबार जारी त्यों जीवे सख्त नाम विसारी एक निमख जो सिमरन में जिया कोट दिन सलाख सदा थिरथिया रहो बिन सिमरन त्रे कर्म करास काग बतन विष्टा में बास बिन सिमरन पै कुकर काम बाग साक्त विश्वा पूतन नाम बिन सिमरन जैसे सीन सिंह सतारा बोले कूर साक्त मुहकारा बिन सिमरन करते की न्याय साक्त थान पृष्ठ फिराए बिन सिमरन कुकर हरकाया साक्त लोभी बंद न पाया बिन सिमरन है आत्म घाती साक्त नीच तिस कुल नहीं जाती जिस भया कृपाल तिस सतसंग मिलाया कहो नानक गुर भगत तराया गौड़ी महला पंजवा गुर के बचन मोहे परम गत पाए गुर पूरे मेरी पैज रखाए गुर के बचन त्यायो मोहे नाओ गुर प्रसाद मोहे मिलिया था ओ रहाओ गुर के बचन सुन रसन बखाणी गुर कृपा ते अमृत मेरी बाणी गुर के बचन मिटिया मेरा आप गुर की दया ते मेरा वट प्रताप गुर के बचन मिटिया मेरा भरम गुर के बचन पेख्यो सब ब्रह्म गुर के बचन कीनो राज जोग गुर के संग तरिया सब लोग गुर के बचन मेरे कार्ज सिद्ध गुर के बचन पाया नाव निद जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा तिसकी कटिए जमकी फासा गुर के बचन जागया मेरा कर्म नान गुर भेटिया पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा तिस गुर को सिमरो सास सास गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी रास राओ गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण धोए धोए पीवा गुर की रेनत मज्जन करो जन जन की ओमे मल हरो तिस गुर को चूलावो पाखा महा अगन दे हाथ दे राखा तिस गुर के ग्रह ढोवो पानी जिस गुर ते अकल गत जानी तिस गुर के ग्रह पीसो नीत तिस प्रसाद बैरी समीत जिस गुरमुख को दीना जियो अपना दास राय आपे मुलियो आपे लायो अपना प्यार सासदा तिस गुर को करी नमस्कार काल क्लेश पै परम दुख नाथा कौ नानक मेरा गुर समराथा गौड़ी महला पंजवा मिल मेरे गोबिंद अपना नाम दियो नाम बिना त्रिग त्रिग स्नेहो राओ नाम बिना जो पैरे खाए जो कुकर जूठन में पाए नाम बिना जेता व्यवहार जो मृतक मिथिया सिगार नाम विसार करे रस भोग सुख सुपहे नहीं तन में रोग नाम त्याग करे अनकाज बिनस जाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत ना लावे कोट कर्म करतो नरक जावे हर का नाम जिन मन ना रादा चोर की न्याय जम प्रभादा लाख डंबर बहुत विस्तारा नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सुई जन ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी महला पंजवा
ਆਦਿ ਅੰਤ ਜੋ ਅੰਤ ਨਿਵਾਹੇ ਸੋ ਸਾਜਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੇ ਹਰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਸੰਗ ਚਾਲੈ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਿਤ ਪਰ ਲੈ ਰਹੋ ਬਿਨਸਤ ਨਾਹੀ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਏ ਜੈ ਭੇਖਾ ਤਹਿਰਿਆ ਸਮਾਏ ਸੁੰਦਰ ਸੁਗੜ ਚਤਰ ਕੀ ਚਤਰ ਜੀ ਦਾਤਾ ਭਾਈ ਭੂਤ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਤਾ

गुरु सेवा पौजल तरिय कहो पुकारिया। गौड़ी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण हर रंग रंगो जब जेबा हर एक मंगो राओ। ताजो मैं गुरु ज्ञान पजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो जो दिसे सो संग नांगे हो साक्त मूड लगे पज मोयो। मोहन नाम सदा रव रहे हो कोड मद एक ने गुरमुख ले हो हर संतन कर नमो नमो नो न पावे तुल सुखो। नैन लोभो साज जनो हृदय गावो नाम निदो काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दुहते रहो। दुख अंधेरा करते मिटियो गुरु ज्ञान दृढ़ाया दीप बलियो जिन सेविया सो पार परियो जन नान गुरमुख जगत तरियो। महला पंजवा गौड़ी हर हर गुर गुर करत भरम गए मेरे मन सब सुख पायो राहो बल तो जल तो क्या गुरु चंदन शीतलायो। अज्ञान अंधेरा मिट गया गुरु ज्ञान दिपायो पावक सागर गहरो चर संतन नाम तरायो। ना हम कर्म ना धर्म सच सोच प्रभ गह पूजा पायो। पाव खंडन दुख पंजनो भगत वशल हर नहायो। अनाथ नाथ कृपाल दीन समृत संत उठायो निर्गुण यारे की बेनती देव दर्श हर रायो। नानक सरन तुवारी ठाकर सेवक द्वारे आयो। कौड़ी महला पंजवा रंग संग विख्या के भोगा इन संग अंदर जानी ओ संचो काटता सगली अवद बिहानी रहो। ओ सूरा प्रधान हो को नाई मुझे समानी जोवन बंद चार कुलीना मन में होए गुमानी। ज्यों जायो बाद बुद्ध का मृत्या नहीं विसरानी भाई मीत पंतव सख है पाछे तिन्हू कौ संपानी। जित लागो मन वासना अंत साए प्रगटानी आम बुद्ध सुच कर्म कर ए बंधन बंधानी। दयाल पुरख कृपा करो नानक दास दसानी जुमला। एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद रा गोड़ी पूर्वी संत महला पहला। मुंद रहन दे लड़िया जियो नींद ना आवे जा तन दुबलिया जियो पर कह आवे तन दी तन थी दुबल कंध आवे केव नैनी देखे। सिगार मिठरस भोग भोजन सब झूठ किते ना लेखे। मैं मत जोवन गर्भ गाली दुद्दा थनी ना आवे। नानक सातन मिले मिलाए बिन फिर नींद ना आवे। मुंद नि मानड़िया जियो बिन तरी तनी प्यारे क्यों सुख पावेगी बिन उरदारे। नह बिन कारा बास नाही पुछो सगी सहेलिया बिन नाम प्रीत प्यार नाही बसे साच सुहेलिया। सच मन मन सज्जन संतोख मेला गुरमति सौ जानिया। नानक नाम न छोड़े साधन नाम सहज समाणिया। मिल सकी सह लड़ियो हम पिर रावे हा गुरपुछ लिखियो लिखियोगी जियो सब सुनेया। शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछताणिया। निकस जातो रहे अस्थिर जाम सच पछाणिया। साच की मत सदा नौतन शब्द ने उन वेलियो। नानक नदरी सहज साचा मिलो सगी सहेलियो। मेरी इस पुण्य जियो अमकर साजन आया मिल वर नारी मंगल गाया। गुण गाय मंगल प्रेम रहसी मुंद मन माहो। साजन रन से दुष्ट व्यापे साज जप सच लाहो। कर जोड़ सा धन करे बिनती रहन दिन सरस सरस पिनिया। नानक पिर तन करे रलिया इस मेरी पुनिया। गौड़ी संत महला पहला। सुन नहा प्रभु जियो एक लड़ी बन माहे क्यों तीरेगी ना बिना प्रवे प्रवाहे। तन ना बाजो रह न साके बिखम के रहन कनेरिया। न नींदिया वे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया। बाजो प्यारे कोय न सारे करड़ी कुरलाए। नान सातन मिले मिलाए बिन प्रीतम दुख पाए। पिर छोड़ी अड़ी जियो कौन मिलावे।
रस प्रेम मिली जियो शब्द सो आवे शब्द सो आवे तां पत पावे दीपक दे उजारे सुन सकी सहेली सास सुहेली साचे के गुण सारे सतगुर मेली तां फिर आवे बिकसी अमृत बाणी नान सातन ता फिर पारावे जां तिसके मन पाणी पारि ब्रह्म ऐसो अगनंता असंख ते किन बख्शन हारा नानक साहिब सदा दियारा सलोक सत कहो सुन मन मेरी सरन परो हर राय उक्त सियानप सगल त्याग नानक लई समाई पौड़ी ससा सियानप छाड एयाना हिकमत हुकम ना प्रभु पतियाना सहस पात करे चतराई संग तोहारे हेक न जाए सौ सौ जप दिन राती रे जी चले तोहारे साथी साथ सेवा लावे जाए आपे नानक ताको दुख ना व्यापे सलो के हर हर मुक्ते बोलना मन उठै सुख होए नानक सब मैं रब रहा थान तन अंतर सोए पौड़ी हे रो काटे काटे सगल कै पूरे भगवान होवते आए सद संदीप दुख पंजन गुर ज्ञान हौ छुटके हुए आनंद तै हो नाही तै आप हते दुख जन मैं मरण संत संग प्रताप हित कर नाम दृढ़े दयाला संता संग होत के रिपाला उरे कशुना किन्हू किया नानक सब कशे प्रभ ते हुआ सलोक लेखे कते न छूटी है खिन खिन पुलन हारी बख्शन हारे बख्शला नानक पारे उतारी पौड़ी लून हरामी गुनहगार बेगाना अल्प माते जियो पिंड जिन सुख दिए ताहे न जानत ताते लाहा माया कारने दया दिस टूंडन जाए देवन हारद तार प्रभ निमक न मने बसाए लाले चूट बेकार मोह इया सपे मन माहे लंपट चोर निंदक महा तिन्हू संग बहाए तुझ पावे ता बख्श लिहो खोटे संखरे नानक पावे पार ब्रह्म पाहन नीर तरे सलोग खाद पीत खेलत हस्त परमे जन्म अनेक पाव जल ते काड हो प्रभु नानक तेरी टेक पौड़ी खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए खेद मिटे साधु मिलत सतगुर बचन समाए खिमा गही सच संचयो खायो अमृत नाम खड़ी कृपा ठाकुर पई नंद सुख विश्राम खे बनवाहे बहुत लाभ कर आए पतवंत खरा दलासा गुर दिया आए मिले भगवंत आपन किया करे आप आगे पाछे आप नानक सौ सराही है जो कट कट रहा ब्याप सलोक आए प्रभ सरनागति कृपा निध दयाल एक अखर हरे मन बस्त नानक होत निहाल पौड़ी अखर मैं तिर पवन प्रभ धारी अखर कर कर बेद बचारी अखर शास्त्र सिमरत पुराणा अखर नाद कथन विखाना अखर मुक्त जुगत पै भरमा अखर कर्म किरत सुच धर्मा दिष्ट मान अखर है जेता नानकी पार ब्रह्म निरलेपा सलोक हाथे कलम अगम मस्कत लेखावती उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती उस्तत कहन न जाए मुखो तुहारियां मोहे देख दरसे नानक बलहारियां पौड़ी हे अच्युत हे अपार ब्रह्म अवनाशी अगनास हे पूरन हे सर्वमय दुख पंजन गुणतास
हे संगी हे निरंकारे हे निर्गुण सब टेक हे गोबिंद हे गुण निदान जाकै सदा बबेक हे आम पर हर हरे हैप्पी होवन हारे हे संतां के सदा संग निदारा आधार हे ठाकुर हउ दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए नानक दीजे नाम दान राख्यो ही आ परोए सलोक गुरदेव माता गुरदेव पिता गुरदेव स्वामी परमेश्वरा गुरदेव सखा अज्ञान भंजन गुरदेव बंधत सहोदरा गुरदेव दाता हर नाम उपदेसा गुरदेव मंत नरोदरा गुरदेव सांत सत बुद्ध मूर्ति गुरदेव पारस परस्परा गुरदेव तीर्थ अमर सरोवर गुर ज्ञान मंजना परपरा गुरदेव करता सब पाप हरता गुरदेव पतित पवित करा गुरदेव आदि जुगाद जुग जुग गुरदेव मंत हर जप उदरा गुरदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा आ मूड पापी जित लग तरा गुरदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानके हरे नमस्कारा एहो सलोक आद अंत पढ़ना गौड़ी सुखमणी महला पंजमा सलोक एक ओंकारी सतगुरु परिषाद आद गुर ए नम है जुगाद गुर ए नम है सतगुर ए नम है श्री गुरदेव ए नम है अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावू कल कलेस तन माहे मटावू सिमरो जास बसंबर एकै नाम जपत अगनंत अनेकै वेद पुराण सिमर सुधा आखिर कीने राम नाम एक आखिर किनका एक जी जी बसावी ताकी महिमा गणी न आवी कांकी एकै दर्स तोहारू नानक उन संग मोहे अदारू सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहो प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ रे प्रभ सिमरत कस बिघन न लागे प्रभ कै सिमरन अन दिन जागे प्रभ कै सिमरन पाउ न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै प्रभ कै सिमरन साध कै संग सरन दान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निधि प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिन सै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दर गै मानी प्रभ कै सिमरन होई सु भला प्रभ कै सिमरन सुफल फला से सिमरे जिपया जिने आप सिमराए नानक तां कै लाग्यो पाई प्रभ कै सिमरन सब ते ऊंचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा प्रभ कै सिमरन त्रिसना बूजा प्रभ कै सिमरन सब की सूजै प्रभ कै सिमरन जम तरासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन की मल जाए अमृत नाम रिदमहि समाए प्रभ जी बसे साध की रसना नानक जानका दासन दसना प्रभ को सिमरे से तनवंते प्रभ को

हर जुग जुग भगति उपाया पैज रखदा आया राम राजे हर नाख सदुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेवया अंत लै छाया एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम न होई तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया

सह सतव नैन नन नैन हह तोहे काओ सहस मूरत नना एक तो ही सहस पद बिमल नान एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोहे सब मह जोत जोत है सोय तिसदा चानन सब मह चानन होय गुरसाखी जोत प्रगट होय जो तिस भावै।

जम काल सह है सिर डंडा हे, हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण भव खंडा हे। अविनाशी पुरख पाया परमेसर, बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा हे। जन नानक नाम।

것인지 고리 숙무니 마할라 반제와 슬로카 इकोंकार सतगुर प्रसाद आदगुरे नमः जुगादगुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल क्लेश तन माहि मिटावो सिमरो जास बसंबर एक नाम जपते आगंत निक वेद प्राण सिमर सुदाखर

नानक उन संग मोहे उदहरो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जना के मन विश्राम रहो। प्रभ के सिमरन गर्म नाम बसे प्रभ के सिमरन दुख जम नसे प्रभु के सिमरन काल पर हरे प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागे प्रभु के सिमरन अंधन जागे प्रभु के सिमरन पौ ना व्यापे प्रभु के सिमरन दुख ना संतापे प्रभु का सिमरन साध के संग सर्वदान नानक हर रंग प्रभु के सिमरन रिद सिद्ध नौ निद प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ के सिमरन जप तप पूजा प्रभ के सिमरन बिनसे दूजा प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ के सिमरन दरगह मानी प्रभ के सिमरन होय सो भला प्रभ के सिमरन सफल फला से सिमरे जने आप सिमराए नानक ताके लागो पाए प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा प्रभु के सिमरन उदरे मूचा प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझै प्रभु के सिमरन सबके सुजै प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा प्रभु के सिमरन पूर्ण आसा प्रभु के सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम हृदय माए समाए प्रभ जी बसे साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरे से तनवंते प्रभु को सिमरे से पतवंते प्रभ को सिमरे से जन प्रवान प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरे से वे मोहताजे प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे प्रभु को सिमरे से सुखवासी प्रभु को सिमरे सदा विनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगेर वाला प्रभु को सिमरे से परे उपकारी प्रभु को सिमरे तिन सद बलिहारी प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे प्रभु को सिमरे तिन सुख व्यावे प्रभु को सिमरे तिने आत्म जीता प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता प्रभु को सिमरे तिने अंधक नेरे प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे संत कृपा ते अंधन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभु के सिमरन कार्य पूरे प्रभु के सिमरन कबून झूरे प्रभु के सिमरन हर गुण बानी प्रभु के सिमरन सह समानी प्रभु के सिमरन निश्चल आसन प्रभु के सिमरन कमल बिगासन प्रभु के सिमरन अनाद चुनकार सुख प्रभु सिमरन का अंत ना पार सिमरे से जन जन को प्रभ मया नानक तिन जन सरनी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग वेद उपाए हर सिमरन पै सिद जती दाते हर सिमरन नी चौ कुंड जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन क्यो सगल कारा हर सिमरन में आवन कारा कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। श्लोक दीन दर दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ संत मारी आयो नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत ना भाई मनुहा नाम तेरे संग सहाय जय महा भ्यान दूत जम दले तै केवल नाम संग तेरे चले जय मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माए उधारी अनक पुन चरण करत नहीं तरे हर को नाम कोट पाप पर हरे गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे सगल सिष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत हुए सुखिया
ਲਾਖ ਕਰੋੜੀ ਬੰਧਨ ਪਰੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੇ ਅਨਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿਖ ਨਾਮ ਬੁਝਾਵੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਾਵੇ ਜੇ ਮਾਰ ਗਏ ਜਾਤ ਕੇਲਾ ਤੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਹੋਤ ਸੁਹੇਲਾ ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨਸਾ ਧਿਆਈਐ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ ਛੂਟਤ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਲਖ ਵਾਹੀ ਨਾਮ ਜਪ ਤੈ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀ ਅਨਕ ਬਿਘਨ ਜੈ ਆਇ ਸੰਘਾਰੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੇ ਅਨਕ ਜੋਨ ਜਨਮੈ ਮਰ ਜਾਮ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲ ਕਬੂ ਨਾ ਧੋਵੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਖੋਵੈ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਰੰਗ ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ

जतन कर तृष्ण न त्रापै। पेख अनेक अगने मुझे कोट भाव दरगै नहीं सजय छूट सुनाही उपे आल मोह व्यापै माया जाल और करतूत सगली जमडाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम।

रे चंदन लेप उतारे धोए गर्त प्रीत भसम संग होए अंधकूप मैं पतित विकराल नानक काट लियो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक बचारा करे दिन रात बार पेख अंतर मल माया शब्द नाए किस करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ सुहाने अंतर अग्न बार तन सुहा गल पात्र कैसे तरे अथा जाके अंतर से प्रव्याप नानन ते जन सह समाद सुनिंदा कैसे मार्ग पावे कर के ले ओ निभावे कहां बुझारत बुझे डोरा निस्कहिए तो समझे पूरा।

राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख भावे हर हर जस कहत जे प्रसाद सग तेरे सगल सिद्र ढाके मन सरणी पर ठाकर प्रताके जे प्रसाद तुझको ना पहुचे मन साध साध सिमरो प्रभु उचे जे प्रसाद पाए दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद भूखन पहरिजे मन तिस बिन सिम

श्लोकम् आगमगाद पारमं सुए जो जो कहे सुमुक्ता होए सुनमीता नानक बिनवंता साजना की आचर्य कथाष्पदी साध के संग मुकुजल होत साध संग मल सगली खोत साध के संग मिटे अभिमान साध के संग प्रटे सो ज्ञान साध के संग मुझे प्रभ नेरा साध संग सब उतन मेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बढ़ने कौन पुरानी नानक साध की शोभा ब्रह्मा इसमानी साध के संग गोचर मिले साध के संग सदा प्रभुले साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साध के संग मनोहर बहन साध के संग

कै मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाय महान ब्रह्म ज्ञानी ऊते ऊचा मन अपने सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नान जिन प्रभु आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल गिरी नाथ मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सभी ऊपर मैं आप ब्रह्म ज्ञानी ते शुपुराना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदर सी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युक्ता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान

नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कह कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह वसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कह नाम अवधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम प्रवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अम्बुद त्यागत।

अवनं कारम ब्रह्म ज्ञानी केशो ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक उदारे जो अंतर नाम सर्व में पेखे भगवान

तैसा हरक तैसा सोग सदा आनंद नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा मान तैसा रंग तैसा राजान जो बरताए साए जुगत नानक ओपुर कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर राखे तैसा तिन्ना आपे करण करावन जोग प्रभावे सोई पुन होग पसरियो आप हो अनंत रंग लखे न जाय पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रकाश पार ब्रह्म करता अपना सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पै निहाल श्लोक उस्तत करे अनेक जाने अंत न पारावार।

मन तन नाम रते करंग साब से पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत सुमाना मिट गए गवन पाए विश्राम नान प्रभु कै सतगुरबान। शलोक सुगी वसे मस्कीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी। जिसके अंतराज अभिमान सो नर्क पाती ओवत स्वान। जो जाने मैं जो वनवंत सोवत विष्टा का जंत आप उसको कर्म बंद कावे जन्म मरे बोजोन परमावे। तान भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे। नानकियां मुक्ता किस कुबावे तनवंता होए कर करवावे। त्रिण समान के संग न जावे बोलश्कर मानु कुपर करयास पल पीतरदा का होए बिना सबदे आप जाने बलवंत किन में होए जाए पसमंत। किसे ना बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरे गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान सो जन नानक दर गए परवान। कोट कर्म करे ओ तारे शर्म पावे सगले बिरथारे अनगत बसे।

आपन किया कछ न होए जैसो प्राणी लोचे कोए तिसमें ना ही तेरे किश काम गात नानक जाप एक हर नाम रूप बंत होए ना ही मोहे प्रभु की जो सर कट सोए तनवंता होए क्या को घर बह जा सके तिसका दिया दर बह आसुरा जे को कहावे प्रभु की कला बिना कहता वे जे को होए बह दातार ते देन हार जाने का वार जिस गुर प्रसाद उठे आ रोग नान सोजन सदा रोग जो मंदिर को थामे थम्मण त्यों गुर का शब्द मने अर थम्मण

मंगल सज्जा के सर तो सुनिया करता कह। राज में राजयोग में जोगी तप में तपीसर किसमें भोगी त्याय त्याय भक्ता सुख पाया नानंत प्रका किने अंत न पाया जा की लीला कीमत नाए सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने भूत सगल पर होई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जंदास नाम त्यावे से तय गुण में जाको परमाए जन्म मरे फिर आवे जाए उच नी तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेकरे करंग नाना बिदकीनो विस्तार प्रभव नासी एक अंकार नाना चलत करे खिरमा है पूरे ओ पूर्ण सब ढाए नाना बिदकर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाए सब कर दिसके सब दिसके ठाओ जब जब जीवे नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे गास बताल नाम के तारे सगला कार नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम के संग उदरे सुम सरवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माय समाणी सात कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रकाश सुखदाई विश्वास सत नान गुरते पाए सत भजन सत उपदेश सत्य जन जाके हृदय प्रवेश सात निर्द पूजे जे कोई नाम जब ताकी का धोए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मेहत गत जिसके शिष्य करने हार अब न बूझ करत विचार करते कीमत ना जाने किया नान जो तिस भावे सो वरतिया विस्मन विस्मय विस्मार जिन बुझिया तिस आया स्वाद प्रभु के रंग राज जन रहे गुरु के वचन पदार्थ लहे उदाते दुख काट नहार जिन जाके संग तरे संसार जन का सेवक सोबड़ भागी जन के संगे गिलिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुरु प्रसाद नानक फल पावे श्लोक आद सच जुगाद सच है बे सच नानक होसी पै सच अश्वरी चन सत सत प्रसनार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत वेखण हार नाम सत सत आवण हार आप सत सत सब धारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ भक्ता सुरत सत सत जस सुनता भूजन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप जिने हृदय जन मान्या करन कराम तिन मूल पछान्या

जन जने अपना प्रभु बचाता सो जन सर दुख का दाता तिसकी सरण सर सुख पावे तिसके दर सब पाप मिटावे अवर से आन सगली छाड तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान न होवी तेरा नान तिस जन के पूजो सद पैरा श्लोक सात पुरख जन जानिया सतगुर दिसका नाम दिसका संग सहके उदरे नानक हर गुणगा ओ अष्टपदी सतगुर सिक्की करे ब्रतपाल सेवक हो गुर सदा दयाल सिक्की गुर तुरमत मल हिरे गुर वचनी हर नाम उचरे सतगुर सिक्के बंधन काटे गुर का सिख विकार दे हटे सतगुर सिक्को नाम धन दे गुर का सिख वडभागी हे सतगुर सिक्का हल्द पल सवारे नान सतगुर सिक्को जी नाल समारे गुर के ग्रह सेवक जो रहे गुर की आ गया मन में सहे आप उसको कर कस नान जनावे हर रन नाम हृदय सत्य आवे मन बेचे सतगुर के पाव ते सेवर के कार्य रा सेवा करते हुए न कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेव गुरु की मत ले बीस विश्व गुरु का मन माने सो सेव परमेश्वर की घर जाने सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ मन कबार गुरु को बल जाओ सर्वधान जी का दाता आठ बहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जान जन्मे पार ब्रह्म कह आपने किस परम सह सियाण भले आन जाइये नानक ऐसा गुरु वड़ भागी पाइये सबल दर्शन भेख बुनीत प्रसत जन गात निर्मल रीत भेट संग्राम गुण रवे पार नमकी दरगह गवे सुनकर वचन कर्ण गाने मन संतोख दंपतिया ने पूरा करे आख्यो जाका मंत्र अमृतिश भिख्यो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जिस पाए कुस्त अनेक सत पुरख पूर्ण विवेक आओ बोल न पोचित प्राणी गम गोचर परम निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाय ताकि कीमत किन न पाए अनक भगत बंधन नित करे चंद कमल हृदय सिमरे सतमले हारी सतगुरु अपने नान जिस प्रसाद अवसा प्रभ जपने वरस पावे जन कोय अमृत पीवे अमृत सोए

कारण कारण सो प्राप्त सम्राथ दृढ़ कर गह हो नाम रभा ते धन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मन ते कास राखो मन माए सर्व रोग नान मिट जाए जिस धन को चार कुंटल धावो सो धन हर सेवा ते पावो जिस को निवाचे मीत जिस धन को चार कुंटल धावे है सो हर सो धन हर सेवा ते पावे जिस को निवाचे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा पज हर की सरनी अनको बावी रोग न जाए रोग मिटे आरे औख दलाए सर्व निदान में हर नाम निदान जब नानक दरगे प्रवान मन प्रबुद्ध हो हर कह नाए दिस्ताव दिया बैठाए दाको बिघन न लागे कोए जाके हृदय से हर सोए कल ताती ठांडा नाओ सिमर सिमर सदा सुख भाओ भवन से पूर्ण होया बहुत पाए आत्म प्रकाश तित कर जाए वसेव नासी कहो नानक काटी जम फासी तत् विचार कहे जन साचा जन मरे सो काचो काचा आवा गुण मिटे प्रभ सेवा त्याग शरण गुरुदेव रत जन्म का हुए उदार हर सिम प्राण आधार अन को भावन छुटन हरे सिमर शास्त्र वेद विचारे हर की भक्त करो मन लाए मन वंश नानक बल पाए संग न चालस तेरे धना तू क्या लुटावे मूर्ख मना सोतमीत कुटाम वर बनता इनते कहो हो तुम कौन सुना था राज रंग माया विस्तार इनते कहो हो कौन छुटकार सस्ती रथ सवारी झूठा डम झूठ सारी जंदीए मुझे ना बगाना नाम सार नान बिजताना गुर की मत तू ले आने भक्त बिना वो डूबे स्याने हर की भक्त करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीज चरण कमल रखो मन माए जन्म जन्म के किल बख जाए आप जबो अब नाम जपावो सुंत गैत रहत गद पावो

तनार पूंजी संच करो व्यवहार। इहां सुख दरगह जयकार सरन निरंतर एको देह को नान जाके मस्तक लेक एको जापे को सलाह एक सिमरे को मनया एक के गुण गाओ अनंत मंथन जाप एक पवंत एको एक एक हरा पून पूर्यो प्रव्यापन विस्तार एक ते पै एक रात प्रास्त गए मंत्र अंतर एक प्रवराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया पर्या तो शरणाए।

सतगुर ते निर्मल मतलई जन को प्रभ होयो दयाल। सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन मरण दूप रम गया। इस पुन्नी सबदा सब पूरी रव रया सतसंग हजूरी जिसका साथ लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाये।

सगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आया पे फिर जावस परी जब आकार कृष्णा दिष्टेता पापन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समा तब बैर ब्रोक संकमात जब इसका वर्ण चेन्ना जब तब हर शोक से व्याप्त जब आपने आवे आप पार ब्रह्म

पधार। अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्राण तरण गाए सुहाओ। आठ पहर पर देखो नेरा, मिटे ज्ञान मिनसे अंधेरा। सुन उपदेश हृदय विसावो, मन से नानक फल पावो। हालत पलत दुले सुहार, राम नाम अंतर उधार। पूरे गुकी पूरी दिखिया, जिस मन उसे साज प्रीख्या। मंत्र नाम जो बोल बुलाए, दुख दर्द मंते बो जाए। सच पवार को बपारी,

जी की जुगत जाके सव्यात पूरे गुरु की पूरी दिख्या जिसमें बसे ते साज परीख्या मंत्र नाम जपो लुलाए दुख दर्द मन ते पो जाए सच व्यापार करो अपारी दरगह निवेखे तुम्हारी एका टेक रखो मनमाए नानक बोर ना आवे जाए तिस्ते दूर का को जाए उभरे राखण हार ते आए निरपो जपे सगल भाव मिटे प्र कृपा दे प्राणी छुटे जिस पर राखे तिसनाए दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाय मिटे अहंकार ते जन को कोयन पहुचन हार सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक दा कै कारज पूरा मत पूरी अमृत जा की दृष्ट दर्शन भेख दो दृष्ट श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सवल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा से प्रवान अंतर जामे पुरख प्रदान जिस मन वसे सो होत निहाल ताके निकना आवद काल अमर भय अमरा पद पाया सात संग नानक हर त्याया श्लोक ज्ञान अंजन गुरदिया ज्ञान अंधेर विनाश सार कृपा दे संत भेटिया नानक मन प्रगाश अष्टपदी संत संग अंतर प्रवीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एक कट माए अनकरंग नाना अधिष्ठाए नौन दे अमृत प्रभु का नाम दे में इसका विश्राम सुन समाधान तैनात कह न जाये चर्च समाध तिन देखिया जिजाव दिखाए नान ते जन सो जी पाए सो अंतर सो बार अनंत कड़कड़ व्यापरिया भगवंत धरण माए आकाश प्याल सर्व लोक पूर्ण बृतवाल बंतन पर्वत है पारम जैसी आज्ञा तैसा कर्म बौन पानी बेसंतर माए चार कुंड है दिशे समाए तिस्ते भिन्न ही कोठाओ गुरप्रसाद नानक सुख भाओ वेद प्राण सिमृत में देख ससे सूर नखत्र में एक बाणी प्रभु की सब को बोले आप डोल न कबून डोले सर्व कला कर खेले खेल मोल न पाइये गुणे मोल सर्व जोत में जाकी जोत हारियो स्वामी ओत बोध गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन में है विश्वास संत जना का पेखन साब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ वचन सर्व व्यापी राम संग रचन जन जाता दस की है रहत सत वचन साधु सब कह जो जो है सोए सुख माने कारण कराव नहार प्रजाने अंतर बसे बार बियो ही नान दर्शन देख सब मोही ओ आप सत किया सब सत तिस पर दे सगली उत्पत तिस पावे ता कर विस्तार तिस पावे ता एक अंकार अंक कला लखी ना जाए जिस पावे तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आप आप भरपूर अंतर गति आप जनाए नान तिस जन आप बुझाए सर भूत आप वरतारा सब नैन आप बेखनहारा सगल समग्री जाका तना आपन जासा भी सुना आपन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी किन्नी माया सबके माद लिप्त हो रहे जोगच कहना सो आपे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नान जा पावे तन ले समाए इसते हुए सुनाए बुरा उरे कहो किने किस कराया भला कर तू ता निकी आपे जाने अपने जी की आप साझदारी सब साज ओत बोध अपन संग्राज दागी गदमंद कही न जाए दूसर हो तो सो जी पाए तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नान क्यों जान जो जाने तिसरा सुख होए

अवन काए स्वाओ जन के संगत आवे नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानत जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर भेख सा सा सिमरो गोबिंद मन अंतर के उतरे चंद आस नित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मांगे आप छोड़ बेनती करो सा संगागन सागन तरो हर दिन के पर ले भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग पद परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद मदरस पियो चचित बो नारायण एक एक रूप जाके रंग नेक उपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाले रतन संत कुमावत हो तो उधार आप तेरे लोक निस्तार सबल जीवन सबलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाद बाजे सुन सुन अंध करे प्रगा जय प्रटे गोपाल महात के माथे नानक उतरे तिनके साथे सन जो सुन सन नी आए कर कृपा प्रभ्या मिलाए मिट गए बैर पे सबरे ने अमृत नाम साथ संग लैन

सुनिया पोहे न सकै काल, नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास। सुनिया ईसर ब्रह्माइंद, सुनिया मुख साला हनुमंद, सुनिया जोग जुगत तन भेद, सुनिया सात सिमरत वेद, नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास।

नानक भगता सदा विनाश। सुनया है दुख पाप का नाश, सुनया है सरा गुना के गाह, सुनया है सेख पीर पात साह।

कहूं कह ना सकत के अचाल मूर्त अनुभव प्रकाश अमितोज कही जय कोट इंद्र इंद्राण साहे सहान गनिजय तेर पहु मही पसुर नर असुर नेत नेत बान त्रेन कहत तुव सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत

है या पीहित है, तेरे मान है, निदान है, तेरे वर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगांज है, अपांज है, अचूज है, अचांज है, अमीक है, रफीक है, अतांध है, अबांध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नरसीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, कर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, प्रजांग प्रयाशंद

ईशान जले है थले है अपीत है अपे है प्रभु है अजू है अदेस है अपेस है पजंग प्रयाशंद अगाधे अबाधे नंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नवाह तवंग नाथे नवाह तवंग प्रवाथे नवाह तवंग गंजे नवाह तवंग अपंजे

के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र काल है, के सर्वत्र पाल है, के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र काज है, के सर्वत्र काज है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र सुख है, के सर्वत्र पोख है, के सर्वत्र तराण है, के सर्वत्र पराण है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र मान्य है, सदैव प्रधान्य है, के सर्वत्र जाप्य है, के सर्वत्र थाप्य है, के सर्वत्र पान है, के सर्वत्र मान है, के सर्वत्र इंद्र है, के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वं कलिम है, के परमं फहीम है, के आकल अलाम है, के साहेब कलाम है, के हुसन अल वजू है, तमामल रुजू है, हमें सल सलाम है, सलीख तुम दाम है,

तोर कर्म जनक तुद पाया तो तिनी खसम ते आया। एना जनता कह बस कृष्ण है तुत वे के जगत पाया। एक नन तो मेल है कप तुद खुआया। गुरु कृपा ते जाने जिथे तुद आप बुझाया। सहज ही सच समाया, सहज ही सच समाया।

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा सासंग जीओ वड्डिया पागां वाले हां, महाराज साहब जी की पावन पवित्र हजूरी च हाजरियां भर के अपने जीवन के कीमती समान समय नू सफल बना रहे हैं। और भागां वाले जो शरीर मिलिया है, सवास मिले ने, जिंदगी मिली है, अमृत वेले तो लैके इस वेले तक आप जी ने पावन गुरबाणी दे जाप, गुरबाणी दे कीर्तन, गुरु साहिब जी ने प्यारियां पासों श्रवण किए हैं। हुण लड़ीवार गुरबाणी की व्याख्या का समा है। महाराज साहब सच्चे पातशाह जी अपनी बाणी दे राही सानू जीवन दियां सेधां बख्शिश कीतियां ने, जिंदगी जीण दे ढंग दसे ने, और इनू सौखा सुखमई किवें जीविया जा सकदा ये दसिया है। जिंदगी तां सब जिउंदे आ पर सकून वाली जिंदगी किनू किनू मिलदी है? रब दा प्यार, चलो वाहिगुरु नूं भी आपां एक सैकंड लई परे कर लईए, आराम दी जिंदगी, सुकून दी जिंदगी, शांति दी जिंदगी, टिका दी जिंदगी किनू किनू नसीब होंदी है? बंदे दे मन च कोई संकल्प ना होवे, कोई दौड़ भज ना होवे, कोई चिंता ना होवे दिमाग दे उत्ते, जो उन्हूं मिलिया उहदे च सैटिस्फाई होवे, जिन्ना कु भी है कोल उहदे च रजिया हो बंदा। महाराज जी कहते सहस कटे लक काउट तावै, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। बंदा जिहड़ा बंदे दी वासना नहीं रजदी, ते वासना जिहड़ी है भटकाई फिरदी है बंदे नूं। हजारां कमा के लखां दी वासना, लखां कमा के करोड़ां दी वासना, करोड़ां कमा के अरबां दी वासना, बस भाई गुरुदास जी कहिंदे वासना वधदा आवै जावै। वासना दा वधिया होया फिर आउंदा जांदा रहिंदा, कदे जम पिया कदे मर पिया।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहै। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरौ श्री हर राय। श्री हरि कृष्ण त्याई है जिस जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौने दया में ताए। सब थाई हुए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी धार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा प्यारियां चौहा साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया बन के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमृत कीता। तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्ना सिंह सिंघणियां ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चरवाए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सदके सां सवासां संग निभाया। तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां जी का ध्यान तरके बोलना जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्ब सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब।

नामो को निस्तार बिखे बिलास कहियत बहुत तेरे चलत न कछु संघार इष्टमीत नाम नानक को हर नाम मेरे भंडार टोडी मोहल्ला पंजवा नीके गुण गाओ मिट ही रोग मुख उजला मन निर्मल होई है तेरु रहे इहां उहां लोग रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा मने चिरावो भोग छोड़ आपत बाद अहंकारा मान सोई जो होग संत टहल सोई है लागा जिस मस्तक लिखिया लिखोग कहो नानक एक बिन दूजा अवर न करने जोग टोडी मोहल्ला पांजवा सतगुर आयो सरण तोहारी मिले सुख नाम हर सोभा चिंता लाहे हमारी रहाओ अवर न सूजे दूजी ठाहर हार पर्यो तो द्वारी लेखा छोड़ अलेखा छूट हम निर्गुण लेहो अभारी सदबक सेंद सदा मेहरवाना सबना दे आधारी नानक दास संत पाछे पर्यो राख लेहो एह बारी टोडी मोहल्ला पांजवा रसना गुण गोपाल निध गायण शांत सहज रहस मन उपजो सगले दुख पलायन रहाओ जो मांगे सोई सोई पावै सेव हर के चरण रसायण जन्म मरण दूहू ते छूटै भव जल जगत तरायण खोजत खोजत तत बिचारियो दास गोविंद परायण अबनासी खेम चाहे जे नानक सदा सिमर नारायण टोडी मोहल्ला पांजवा निंदक गुर कृपा ते हाट्यो पार ब्रह्म प्रभु पै दयाला शिव के बाण सिर काट्यो रहाओ काल जल जम जोहे ना साकै सच का पंथा थाट्यो खात खर्चत कृष्ण खुटत नाही राम रतन धन खाट्यो भस्म भूत हुआ खिन पीतर अपना किया पाया अगम निगम कहे जन नानक सब देखै लोक सबाया टोडी मोहल्ला पांजवा

जाकि प्रभ आ गए अरदास। संत प्रसाद वैद्य नारायण करण कारण प्रभ एक, बाल बुद्ध पूर्ण सुख दाता नानक हर हर टेक। टोडी मोहल्ला पंजवा, हर हर नाम सदा सद जाप, तार अनुग्रह पार ब्रह्म स्वामी, वसदी कीनी आप रहाओ, जिसके से फिर तिन ही संभाले, बिन से सोग संताप, हाथ दे राखे जन अपने, हर होए माई बाप, जी जंत होए मेहरबान, दया तारी हर नाथ, नानक सरन परे दुख पंजन, जाका बड़ प्रताप। टोडी मोहल्ला पंजवा, स्वामी सरन परियो दरबारे, कूट अपराध खंडन के दाते, तुझ बिन कौन उधारे रहाओ, खोजत खोजत बहु प्रकारे, सर्व अर्थ बिचारे, साध संग परम गत पाई है, माया रच बंध हारे, चरण कमल संग प्रीत मन लागी, सुरजन मिले प्यारे, नानक अंध करे हर जप जप, सगले रोग निवारे। टोडी मोहल्ला पंजवा, घर तीजा चौप दे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, हां हां लपट्यो रे मूड़े कछु न थोरी, तेरो नहीं सो जानी मोरी रहाओ, आपन राम न चीनो खिनवा, जो पराई सो अपनी मनवा, नाम संगी सो मन ना बसायो, छोड़ जाहे वाहु चित लायो, सो संचियो जित भूख तसायो, अमृत नाम तोसा नहीं पायो, काम क्रोध मोह उप परिया, गुर प्रसाद नानक को तरिया। टोडी मोहल्ला पंजवा, हमारे एक हरी हरी, आन अवर सजान ना करी रहाओ, वड़े पाग गुरे अपना पायो, गुरमो को हर नाम दृढ़ायो, हर हर जाप ताप ब्रत नेमा, हर हर त्याय कुशल सब खेमा, अचार बिहार जात हर गुनिया, महा आनंद कीर्तन हर सुनिया, कहो नानक जिन ठाकर पाया, सब किछ तिसके ग्रह में आया। टोडी मोहल्ला पंजवा, घर चौथा दोप दे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, रूड़ो मन हर रंगो लोड़ै, रूड़ो मन हर रंगो लोड़ै, गाली हर निहो ना होए रहाओ, होट ढेंदी दर्शन कारण, बीथी बीथी पेखा, गुरमिल परम गवाया है, ए बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो, लेख लिखियो तर माथा, ए बद नानक हर नैन अलोए। टोडी मोहल्ला पंजवा, गर्भ गहलडो मूडडो हियो रे, हियो मैं राजरी मायो, डीहर न्याई मोए फाक्यो रे रहाओ, कणो कणो कणो साध लोड़ै, बिन लहणे कैठे पायो रे, महराज रोगाथ वाहो स्यो लुबड़ियो, नह भागड़ो पाए संजोयो रे, सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारे सगले प्राश्त मिट्यो रे, जाको लहण महराज री गांठड़ियो, जन नानक गर्भास ना पहड़ियो रे। टोडी मोहल्ला पंजवा, घर पंजवा दोप दे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, ऐसो गुण मेरु प्रभ जी कीन, पंच दुखर अहंग रोग, ए तन ते सगल दूर कीन रहाओ, बंधन तोर छोर बिखिया ते, गोर को शब्द मेरे हीरे दीन, रूप अनरूप मोरो कछ न बिचार्यो, प्रेम गयो मोहे हर रंग पीन, पेख्यो लालन पाट बीच खोए, अंध चिता हर खे पतीन, तैसी को ग्रहो सोई प्रभ नानक, सो ठाकर तैसही को तीन। टोडी मोहल्ला पंजवा, माई मेरे मन की प्रीत, यही कर्म धर्म जप यही, राम नाम निर्मल है रीत रहाओ, प्राण आधार जीवन तन मोर, देखन को दर्शन प्रभ नीत, बाट काट तो सा संग मोर, मन अपने को मैं हर सखा कीत, संत प्रसाद पै मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत, सिमर सिमर नानक सुख पाया, आद जगाद भगतन के मीत। टोडी मोहल्ला पंजवा, प्रभ जी मिल मेरे प्राण, बिसर नहीं निमक हीरे ते, अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ, खूब परम राख मेरे प्रीतम, अंतर जामे सुगड़ सुजान, कोट राज नाम धन मेरा, अमृत दृढ़ धारो प्रभ मान,

0: आठ पहर रसना गुण गावै जस पूर अगावै समरथ कान तेरी शरण जीन के दाते सदा सदा नानक कुरबान। टोडी मोहल्ला पांजवा। प्रभ तेरे पग के धूर दीन दयाल प्रीतम मन मोहन कर कृपा मेरे लोचा पूर रहाओ दे सराव रहा जस तुमरा अंतर जामी सदा हजूर जो तुमरा जस गावे करते सेजन कबु न मरते चूर तंद बंद बिन से माया के साधु संगत मिटे बिसूर सुख संपत भोग अस जी के बिन हर नानक जाने कूर। टोडी मोहल्ला पांजवा। माई मेरे मन की प्यास एखन रह न सको बिन प्रीतम दर्शन देखन को धारी मन आस रहाओ सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल बिखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अबनासी बिमल जाको जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा पेटे गुण तास संत सहज सुख मन उपजियो कोट सुर नानक परगास। टोडी मोहल्ला पांजवा। हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगल चतर सब बेता रिद दास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म भूम बीजन सोखावन बिस्मन बिस्म भय बिस्मादा आन बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दा सदा बल जावन। टोडी मोहल्ला पांजवा। माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोबिंद भजन बिन हड़ का जल रहाओ छोड़ सियानप बहु चित राई दुए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानक देखा एह उत्तम फल वेद बख्यान करत साधु जन भागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन पै मल। टोडी मोहल्ला पांजवा। माई चरण गौर मीठे वडे भाग देवे परमेसर कोट फला दर्शन गुर डीठे रहाओ गुण गावत चौथे अब नासी काम क्रोध बिन से मद ठीठे अस्त्र पै साच रंग राते जन्म मरन बोहर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बिहून चले सब मूठे। टोडी मोहल्ला पांजवा। साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद होवे दिन राती अंकर भलो हमारा रहाओ गुर पूरा भेट्यो बड़ पागी जाको अंत न पारा वारा कर गए कर लियो जन अपना बिख सागर संसारा जन मरन काटे गुर बचनी बोड़ न संकट द्वारा नानक सरन गई स्वामी की पुने पुने नमस्कारा। टोडी मोहल्ला पांजवा। माई मेरे मन को सुख कोट नंद राज सुख भोगवै हर सिमरत बिन से सब दुख रहाओ कोट जन्म के किल बिख नास सिमरत पावन तन मन सुख देख स्वरूप पूर्ण पई आसा दर्शन भेट ती उतरी भुख चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध काम तीन पार जात हर हर रुख नानक सरन गई सुख सागर जन मरन फिर गर्भ न तुख। टोडी मोहल्ला पांजवा। हर हर चरण हृदय और तहारे सिमर स्वामी सत गुर अपना कार्य सफल हमारे रहाओ पुन दान पूजा परमेसर हर कीर्त तत् बिचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकर अगम पारे जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बोर कछ ना बिचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मझारे। टोडी मोहल्ला नौवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहा अपनी अदमाई और जो कनक कामनी के रस ने कीर्त प्रभ गाई रहाओ जग झूठे को सच जान कै तासु रोचि उपजाई दीन बंद सिमरियो नहीं कबहू होत जो संग सहाय मगन रहो माया में निस दिन छुटी न मन की काई कह नानक अब नाहे अनत गात बिन हर की सरनाई। टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कोई बोले निरवा कोई बोले दूर, जल की मछली चरे खजूर, काए रे बक बाद लायो, जिन हर पायो तिने छिपाए रहाओ, पंडित होए कै भेद बखाना, मूर्ख नाम देव राम जाना, कौन को कलंक रहो राम नाम लेते ही, पत तपै तपै राम कहते ही रहाओ, राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई, एकादशी व्रत रह काहे को तीर्थ जाई, पंत नाम देव सुकृत समत पह, गुरमत राम कह को ना बेकुंठ गय, तीन छंदे खेल आछ रहाओ, कुम्हार के कर हांडी आछ, राजा के कर सांडी गो, बामन के कर रांडी आछ, रांडी सांडी हांडी गो, बाणिये के कर हींग आछ, पैसर माथे सिंग गो, देवल मदे लिंग आछ, लिंग सिंग हींग गो, तेली के कर तेल आछ, जंगल मदे बेल गो, माली के कर केल आछ, केल बेल तेल गो, संत मदे गोबिंद आछ, गोकल मदे श्याम गो, नामे बदे राम आछ, राम श्याम गोबिंद गो।
1: राग बैराड़ी महला चौथा, घर पहला दो पदेख, ओंकार सतगुरु प्रसाद, सुन मन अकत कथा हर नाम, रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावे, पद गुरमत हर राम राम रहाओ, नाना ख्यान पुराण जस उत्तम, कर दर्शन गावे राम, शंकर करोड़ तेतीस त्यायो, नहीं जान्यो हर मर्मा,

चौथा मन मिल संत जना जस गायो हर रतन रतन हर निको गुरु सदगुरु धन दिवायो रहो।

सत कृपा करि जगदीश्वर तब हर हर हर जस त्यायो जन नानक हर पेट स्वामी दुख में रोग वायो बैराड़ी माला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई नंद करे।

बुलावे। हरि आप पंच तत्व विश्व सारा विश तत्व पंच आप पावे। जन नानक सदगुरु मिले आपे हरि आप जगर चुकावे। बैराड़ी महला चौथा जप मन राम नाम निसारा कोट कोट अंतर के पाप सब खोवे। हर पवजर पारि उतारा रहाऊ।

हरे आपे सासरा भरत नहाई हीरा हरे आपे किया पसारा नानक दिस कृपा करे सो हर नाम व्याज जय सो स्वाहा सच्चा बणजारा बैराड़ी महला चौथा जप मन हर निरंजन रंकारा सदा सदा हर ध्याय सुखदाता जा का अंत न पारा वारा रहा

रहो। केसर कुसुम मृगमय हरणा सर्व शरीर चरणा चंदन भगतान ज्योत्या नेहि सर्व परमल करणा के

तन कमलिए बार क्या टुंडे पैकिया दे सलाइया लैनी भावगा कर सिगारो ता सुहागण जानिए लागे जासो तरे प्यारो यानी बाली क्या करे जा तन कंत न पावे करण पलाव करे बो तेरे सतन मैल न पावे विण करमा किच पाइए।

सिमर सिमर सिमर जन सोए नानक करम प्राप्त होए जन जप्या तिस को बलिहार तिसके संग तरह संसार कौ नानक प्रभ लोचा पूर संत जना के बादशाह तूर तिलंग महला पंजमा कर तीजा मेहरवान साहेब मेहरवान साहेब मेरा मेहरवान जी सगल को दे दान रहो तू काहे डोले प्राणिया तुद राखेगा सृजनहार जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार जिन

दोहे पाचर्य सहोर बार तोते तुमरी अंदर व्यसन कोर साध पड़े अहनत्या चोर से चोरा हो चोर पौड़ी आपे हुक्म चलाइंदा जग तंदे लाया एक आपे ही आप लाइन कुत्ते सुख पाया

जो जन जान भजे अवगत कौ तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कब होना हार टाल जो जान है पासा सूही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिख धारा।

नौ ढाडी दसम सुतावे रैयत बस न देही, डोरी पूरी मां पहनाई बह बिस्टाला लेही। बहत्तर कारिक पुरख समाया उन दिया नाम लिखाई, धर्म राय का दफ्तर सोदिया बाकी।

सुखरलियां माने तन मन देना अंतर राखे अवरा देखना सुने अपाखे सो कत जाने पीर पराई जाके अंतर दर्द न पाई रहाओ दुखी दोहागन दोए पाखीनी जिन नहा निरंतर भगत न कीनी और सलात का

जप मन राम नाम रसना मस्तक लिख लिखे गुर पाया हर हृदय हर बसना रहाओ माया ग्रस्त परमत है प्राणी रख ले वो जाने अपना ज्यों प्रहलाद हर नाक्ष ग्रस्यो हर राख्यो हर सरना कवन कवन की गत मित कही है हर किए पतित पवन ओह टोवै टोर हाथ चम चमरे।

कृपा प्रभु तारी, मिल सतगुर पार परा रहाओ, हमरे पिता ठाकुर प्रभु स्वामी, हर देहो मती जस करा। तुमरे संग लागे से उधरे, ज्यों का ज्यों संग काष्ट लोह तरा, साकत नर होछी मत मद्दम, जिन हर हर ने सेव न करा। ते नर पागहीन दुहचारी, ओह जन्म मुए फिर मरा, जिनको तुम हर मेलो स्वामी, ते नाए संतोख गुर सरा। दुर्मत मैल गई हर पजिया, जन नानक पार परा। बिलावल महला चौथा, आव हो संत मिलो मेरे पाई, मिल हर हर कथा करहो, हर हर नाम बोहित है कल जुग, खेवट गुर शब्द तरहो। मेरे मन हर गुण हर उच्च रहो।

रहो कर कृपा हस्त प्राप्ति नहीं जगत उदाहरण अखंड प्रताप दुख बिन से सुख आनंद परि सौ कृष्ण बुझी मन तन सच त्राप अनाथ को नाथ शरण समृद्धा सगल सिसको माई बाप भगत चल पाए पंजन स्वामी गुण गावत नानक अलाप बिलावल महला पंजवा जैसे उपजा तिसे पछाण पार ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल के महो ही कल्याण रहो गुरु पूरा पेट बड़ पागे अंतर जामी सुगड़ सुजान हाथ दे राखे कर अपने बड़ समर्थ माने को मान परम पै बिनस गए खिन भीतर अंधकार प्रगटे चानन सास सास राधे नानक सदा सदा जाए कुर्बान बिलावल महला पंजवा दोवे थाम रखे गुर सूरे हरत पलत पार ब्रह्म सवारे कारज होए सगले पूरे रहो हर हर नाम जपत सुख सहजे माजन हो साधु तूरे आवण जान रहे तिट पाए जन्म मरण के मिटे बिसूरे राम पे तरे छुटे पै पा जम के कट कट एक रहा पर पूरे नानक शरण परया दुख पंजन अंतर बाहर पे एक जूरे बिलावल महला पंजवा दर्शन देख दोख न सही कबूल हो वो दृष्टा गोचर जिया के संग बसाए लो प्रीतम प्राण उदार स्वामी पूर रहे प्रभ अंतर जामी क्या गुण तेरे सार सुमारी सा साथ प्रभ तुझे चितारी कृपा निध प्रभ दीन दयाला जी जंत की करो प्रतपाला आठ पैर तेरा नाम जन जापे नानक प्रीत लाई प्रभ आपे बिलावल महला पंजा तन तन जो बन चलत गया राम नाम का पचन न की नो करत विकार निस पहुर पाया रहो अनेक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता का सुखीन गया मेरी मेरी कर कर मूटो पाप कर तुलना है परी दया महाविकार घोर दुख सागर जिसमें प्राणी गलत पया सन प्रे नानक स्वामी की बहा पकर प्रभ काट लिया बिलावल महला पंजवा अपना प्रभ आया चीत दुश्मन दुष्ट रहे चक मारत कुशल भया मेरे भाई मीत रहो गए ब्याज उपाध सुमनासी अंगीकार कियो करतार शांत सुख अर अनद कनेरे प्रीतम नाम हृदय उदहार जीव पिंड तन रास प्रभु तेरी तू समर स्वामी मेरा दास अपने को राख हारा नानक दास राहे चेरा बिलावल महला पंजा गोबन सिमर होय कल्याण मिटी उपाध भया सुख साचा अंतर जामी सिमरया जान रहो जिसके जिया तिन किए सुखाले पग जना को साचा तान दास अपन किया पे राखे पै पंजन ऊपर करते मान पही मित्राई मिटी बुराई दुष्ट दूत हर काडे चाण सुख से आनंद घनेरे नानक जीवे हर गुण है विखाण बिलावल महला पंजवा पार ब्रह्म प्रपय कृपाल कार्य सगल सवारे सगल जप जप साधु भय निहाल अंगीकार कियो प्रभु अपने दोखे सगले भय रवाल कंठ लाए राखे जन अपने उदलिए लाए अपने पाल सही सलामत मिल कर आए निंद के मुख होए काल कहो नानक मेरा सतगुरु पूरा गुर प्रसाद प्रभय निहाल बिलावल महला पंजा मूल लालन सो प्रीत मणि रहो तोरी ना टूटा छोरी ना छुट्टा ऐसी मालो खिंच तनी दिन सदैन मन महे बसरत है तू कर कृपा प्रभ अपनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को अकट कथा जाके बात सुनी जन नानक दासन दास कहियत है मोय कर करो

गोविंद कुर मेरे मोहे अपराधी शरण चरण रहो जो जो की न सो तुम जानो पेख ठोर नहीं कुछ टीट मकरण बड़ प्रताप सुनो प्रभ तुम रो कोट अगा तेरो नाम हरण अमर शोषण असद पूलन तुम रो बिड पथित उधरण करुणा माई कृपाल कृपा निर जीवन पद दान घर दर्शन बिलावल महल्ला पंजवा ऐसी कृपा मोहे करो संता चरण हमारो माता नैन दर्श तन तूर परहु रहो गुर को शबल मेरे हीरे बासे हरणामा मन संग तरहो तस्कर पंज निवार उठा कर सगलो परमा होम जरो जो तुम करो सोई पल मन है पावन दुबदा दूर तरो नानके प्रभ तुम ही दाते संत संग ले मोहे उधरहो बिलावल महला पंजवा ऐसी दिखिया जन से अमंगा तुमरो ध्यान तुम्हारो रंगा तुमरी सेवरा तुम्हारे अंगा रहो जन की टैल सुखन जन को उठन बैठन जन के संगा जन चर दा जमुख माचे लागी आशा पूरन अनंत तरंगा जन पार ब्रह्म जाम की निर्मल महिमा जन के चरण तीर्थ कोट गंगा जन की टूर कियो मज नानक जन्म जन्म के हरे कलंगा बिलावल महल्ला पंजवा ज्यो पावे तो मोहे प्रतपाल पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर हम बारक तुम पिता कृपाल रहो मोह निर्गुण गुण नाही कोई पहुँच ना साको तुमरी काल तुमरी गट में तुम ही जानो जियो पिंड सब तुम रो माल अंतर जामे पुरख स्वामी अनबोलत ही जानो हाल तन मन शीतल होय हमारो नानक प्रभ जियो नजर निहाल बिलावल महला पंजा राक्षदा प्रभ अपने साथ तू हमरो प्रीतम मन मोहन तुझ बिन जीवन

करदे मत उधारो जीवन प्राण हर धन सुख तुम ही हो मैं पटल कृपा कर जारो जल बिहून मीन कत जीवन दूत बिना रहन कत बारो जन नानक प्यार चरण कमलन की पेख दर स्वामी सुख सारो बिरावल महला पंजवा आगे पाचे कुशल भया गुरपुर पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभ की नीमाया लो मन तन रवरिया हर प्रीतों दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज आनंद गुण गाय दूत दूस सब हुई खया गुण अगुण प्रभ कछु न बिचार्यो हर कृपा अपना कर लिया अतल बड़ाई अचुत अपना सी नानक उतरे हर की जया बिलावल महला पंजा बिन वै भगति तरण कैसे करो अनग्रो पतत उदारण राख स्वामी आप पुरुषे रव सिमर नहीं आवत फिरत मद मावत बिखिया राता स्वर जैसे औज विहावत अडक मुहावत पाप कमावत बुढ़े ऐसे सण दुख भंजन पुरख निरंजन साधु संगत रवण जैसे केसो कलेश नाश अग खंडन नानक जीवत दर्श दिथे राग बिलावल महला पंजवा दुपते कारण एक ओंकार।

अनेक भगत अनेक जन तारे सिमरे अनेक मणि अंदले टिक निर्धन तन पाय प्रभु नानक अनेक गुणी राग बिलावल मोहल्ला पंजवा घर तेवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मोहन नींद न आवे हवे हार कजर वस्त्र अवरण कीने ओडीनी ओडीनी ओडीनी काव कर आवेरी रव सहरण सुहागण चरण शीश तरु

नैफल तरुम तहे तो मानो साच कहत मैं याको जैसे पण जल में रख हृदय नहे तय पानी जैसे ही तुम तय पछानो भगत हीन जो प्राणी कल में मुक्त नाम ते पावत गुर ये भेद बतावै कहो नानक सोए नर गरुआ जो प्रभ के गुण गावै बिलाबल अष्टपदिया महला पहला कर दसवा इकम ओंकार सतगुर प्रसाद निकट से देखे सब सोई गुरमुख बिरला बूझै कोई विण पै पइए भगत न होई शब्द तय सदा सुख होई ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम गुरमुख पावस रस रसमान रहाओ ज्ञान ज्ञान कथे सब कोई कट कट बाज करे दुख होई कट कहने ते रहे न कोई बिन रस राते मुक्त न होई ज्ञान ध्यान सब गुरते होई साची रह सा

गाय, होती उजल तिलक गलमाला, अंत क्रोध पढ़े नाटुशाला। नाम विसार माया मलबिया, बिन गुर भगत नाई सुख थिया। सूकर सुवन गर्धव मंजारा, पशु मलेश नीच चंडाला। गुरते मोह फेरे तिन जोन पवाइया, बंधन बांध्या आइये जाइये। गुर सेवा ते लै पदार्थ, हिरदे नाम सदा किरतार्थ। साचे दर गया पूछना होए, माने हुकुम सीजे दर सोए। सतगुर मिले ता तिसको जाने, रह रजाई हुकम पछाण। हुकम पछाण।

गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया हर हर नाम पूत बोहटा खेवट शब्द गुर पार लंगैया जम जगती नेड़ न आवे ना को तस्कर चोर लगैया हर गुण गावे सदा दिन राती में हर जस कहते अंचन लैया गुरमुख मनो इकत घर आवे मिलो गोपाल निशान बजैया नैनी देख दर्श मन तृप्त है सरण वाणी गुर शब्द सुनैया।

हम तिस आगे दियो कट कट पैया हर हर हर कंठ है बनया मन मोती चूर बड़ गहन गहनैया हर हर सदा सेज बिछाई प्रभु छूट न सके बहुत मन भैया कहे प्रभु अवर अवर किस कीजे सब बाद सिगार फोकट फुकटैया कियो सिगार मिलन कै ताई प्रभु लियो सुहागण दुख मुख भैया हम चेरी तू अगम गुसाई क्या हम करे तेरे वश पैया दया दीन करो रख ले वो नानक हर गुरु शरण सुमैया।

जय बाज अंगमात मन के त्यागे बिनवंत नानक शरण स्वामी संत संग लिबलागे बिलावल महला पंजवा भाग।

तार हर सब न कह कसम सो भगत जन चितकार दुरपड़ कोई न सक सब चाक चाक पग चाड़ श्लोक माला तीजा।

सेजन सपेना के साथ सपाए मल्ला तीजा गुरसेवत हार पाइए जा को नदर करे मारस्ते देवते पाए सच भगत जिस दे हम मार मिलाए न गुरगे शब्द सुचे नानक सहज मिल रहे नाम वड्याई दे पौड़ी गुरु सतगुरु बेचन।

त्रिग एस दुज भाव की जो मोह माया चेत लाए हर सुख पलर त्यागया नाम विसार दुख पाए मानमुख ज्ञानी अंधले जन्म मर फिर आवै जाए कर सिद्ध न होवे अंधगया पुछताए जिस कर्म होवे त सतगुरु मिले सो हर हर नाम त्याए नमृत जन सदा सुख पाए न जन नानक तिन बल जाए महला तीजा आसा मनसा जगमोनी जन्म होया संसार सब कुछ।

सतगुरु के कार कमावन को दिए हर सेवक अस वडियाई देखो हर संतो जन बिच काया नगरी दुश्मन दूत सब मार कढ़ीए हर हर कृपाल हुआ भगत जाना उपर हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिये श्लोक महला तीजा अंदर कपड़ सदा दुख है मन मुख ध्यान न ला गए दुख दुख विचकार कमावनी दुख वरते दुख आ गए करमी सतगुरु भेटिए ता सच नाम लिव लागे नानक सहज सुख हो अंदरों भ्रम पौ भाग महला तीजा गुरमुख सदा हर रंग है हर का नाम मन पाया गुरमुख वेखण बोलना नाम जपत सुख पाया नानक गुरमुख ज्ञान प्रकाशया तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया महला तीजा मन महले मर एक बार गुरमुख निर्मल हर राख अवतार परत नानक सुनो जन पाई सतगुरु सेव हो मैं मल जाई अंदर

ब्रह्म विष्णु महादो त्रै गुण भोले हमें मोह बधाया पंडित पढ़ पढ़ मुनि भोले दूजे पाए चित लाया जोगी जंगम सन्यासी भोले बिन गुरु तत न पाया मन मुक्त गुरु सदा ब्रह्म भोले तिने बिरथा जन्म गवाया नानक नाम रते सही जान समदे जे आपे बख्श मिलाया महला तीजा नान सो सा लाही है जिस सब कुछ होए तिस सुरे व प्राणियों तिस बिना वरना कोय गुरमुख अंतर मन वसे सदा सदा सुखोय पौड़ी जिन्नी गुरमुख हर नाम धन ना कट्यो ते दिवालिये जुग माहे ओए मंगते फेरे सब जगत बै कोई मोहे थुकना तेन को पाहे ब्राज बकीली करे अपनी प्रतीत कोवन है सब आप लखाहे जिस धन कारण चुप

ता कोई यो मंगल अके कोई कहो दिवाए यो हर तन जोर कीते किसे नाल ना जाए बंडाया जिस सतगुर नाल।

0: जानकी मंगेर वाला
1: प्रभ को सिमरे से पर उपकारी
0: प्रभ को सिमरे तिन सद बलिहारी
1: प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे
0: प्रभ को सिमरे तिन सुख बिहावे
1: प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता
0: प्रभ को सिमरे तिन निर्म

0: हर नाम जपत कर परे न भंग,
1: हर का नाम जन की वडियाई,
0: हर के नाम जन सो पापाई,
1: हर का नाम जन को भोग जोग,
0: हर नाम जपत कछ नाई बजो।

0: कथन करे तो भी सरपंग
1: कै पिंगल पर्वत पर भवन
0: नहीं हो तुआ उस गवन
1: करतार करना मैं दीन बेनती करे
0: नान

0: मोहन भजन बिन बिरथे सब काम
1: ज्यों कर पर कै निरारथ धाम
0: तन तन ते जन जे घट बस्यो हर नाओ
1: नानक नाके बल बल जाओ
0: रहते अवर कछे अवर कम।

0: नानक जस कहै।
1: जय प्रसाद सुने कर्ण नाद,
0: जय प्रसाद पे के विस्माद,
1: जय प्रसाद बोले अमृत रसना,
0: जय प्रसाद सब कह जय बसना,
1: जय प्रसाद हस्त कर चले,
0: जय प्रसाद सब पूरन फले,
1: जय प्रसाद परम गत पावे,
0: जय प्रसाद सुख सहज समावे।
1: ऐसा प्रभु त्याग गर्भ कत लागो,
0: गुर प्रसाद नानक मन जागो,
1: जय प्रसाद तू प्रगट।

0: उतरे सा सुन रस
1: साध के संग सुनो हर नाओ
0: साध संग हर के गुण गाओ
1: साध के संग नमनते विसरे
0: साध संग सर पर निसरे
1: साध के संग लगे प्रभ मीठा
0: साधु के संग कट कर डीठा
1: साध संग पै आज्ञाकारी
0: साध संगत पई हमारी
1: साध के संग मिटे सब रोग
0: नानक साध पेटे संजोग
1: साध की महिमा वेद न जाने
0: जेता सुने तेता बखियाने
1: साध की

0: ज्ञानी सदा सुंदरसी
1: ब्रह्म ज्ञानी के देश अमृत बरसी
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
0: ब्रह्म ज्ञानी एक

सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाहे वाहे गुरु साहिब जी।

सुन कहे सब कोई, अनहद सुन कहां ते होई, अनहद सुन रहे अनहद सुनर ते से कैसे, जिस ते उपजे तिस ही जैसे, ओए जन्म न मरे न आवे जा, नानक गुरमुख मन समझाए नौ।

कौन कहाँ रस खाई, ज्ञान की मुद्रा कवन अवतो, सिद्ध की कवन कमाई, बिन शब्द रस ना आवै अवतो, हमें प्यास न जाई, शब्द रते अमृत रस पाया, साचे रहे अगाई, कवन बुद्ध जित अस्थिर रहिए, कित भोजन तृप्तास, नानक दुख सुख सम

अनरागी रूप न रेख्या जात न होती तो उकलीन रहतो शब्द सुसार गौण गगन जब तबे ना हो तो।

पौड़ी बेकी सिष्ट उपायन सब हुक्म आवै जाय बेकी सिष्ट उपायन सब हुक्म आवै जाय समाही आपे वेख विकसदा दूजा को नाही जो पावै तो रख तू गुर शब्द बुझाही सबना तेरा जोर है ज्यो पावै तिवे चलाही तुद जीवड़ मैं नाही को किस आग सुनाई श्लोक महला तीजा परम भुलाई सब जग फ्री फावी होई भाल सो सौ शांत न देवी क्या चले तिस नाल गुर प्रसादी हर त्याईये अंतर रख्या उरतार नानक घर बैठिया सो पाया जा किरपा कीती करतार महला तीजा धंधा तावत दिन गया रैण गवाई सोए कूड़ बोल विख खाया मनमुख चलिया रोए सिरे ऊपर जम डंड है दूजे पाए पत खोए हर नाम कदे न चेत्यो फिर आवन जाना होए गुर प्रसादी हर मन वसै जम डंड न लागे कोए नानक सहजे मिल रहे कर्म प्राप्त होए पौड़ी एक अपनी सिफत लायन दे सतगुरमती इकना नो नाऊ बख्शन अस्थिर हर सती पौन

संसार की वर्तन गुरमति कट चानना आनैर विनाशन हुक्मै ही सब साजियन रविया सब बाण त्रैण सब किश आपे आप है गुरमुख सदा हर पण शब्द ही सो जी पई सच्चे आप बुझाई श्लोक महला तीजा अभ्यागत एना आखिर जिनके चित में भरम जिस

जाहिर सातल अंत गणत गणावे अखरी अगणत साचा सोए अज्ञानी मतहीन है गुर बिन ज्ञान न होए तूटी तंत्र बाब की वाजे नहीं विजोग विछड़िया मिलै प्रभु नानक कर संजोग तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच तत् चुगे मिले कसे तिनको फास न रंच उड़े तबेगल बेगुले तख चोग कणी पंख तुट तुटे फाही पड़ी अवगुण भीड़ बनी बिन साचे क्यों छूटिए हर गुण कर्म मणि आप छड़ाए छूटिए वड़ा आप तनी गुर प्रसादी छूटिए कृपा आप करे अपने हथ वड़िया बुढ़ाइया जय पावे तै दे थर थर कम पै जीअड़ा थान विहुणा होए थान मान सचेक है काज न फिटै कोए थिर नारायण थिर गुरु थिर साचा विचार सुर नर नाथ नाथ तू निदारा आधार सर्बे थान थनंतरी तू दाता दातार जह देखा तह एक तू अंत न पारा वार थान थनंतर रव रहया गुर शब्दी विचार अणमंगया दान देव सी वड्डा अगम अपार दया दान दयाल तू कर कर देखण हार दया करह प्रभ मेल लहै खिन मह ढाहे ओसार दाना तू बीना तू ही दाना कै सिर दान दालत पंजन दुख दलन गुरमुख ज्ञान ध्यान तन गए बह चूरिए तन मह चीत गवार तन विरली सच संचया निर्मल नाम प्यार तन गया ता जान दे जे राचह रंग एक मन दी जैस्यो सिर सौंपिए पी करते की टेक तंदा तावत रह गए मन मह शब्द आनंद दुर्जन ते साजन पए पेटे गुर गोविंद बन बन फिरती ढूंढती बस्त रही घर बार सतगुर मेली मिल रही जन्म मरण दुख निवार नाना करत न छुटी है बिन गुण जंपर जाहे ना तिस एह ना ओह है अब गुण फिर पछताहे ना तिस ज्ञान ना ध्यान है ना तिस धर्म ध्यान बिन नावै निरपौ कहा क्या जाना अभिमहान था कर ही के वापड़ा हाथ नहीं ना पार ना साजन से रंगले किस पह करी पुकार नानक प्रयों प्रयों जे करी मेले मेलन हार जिन वे छोड़ी सो मेल सी गुर कहे ता पार पाप बुरा पापी को प्यारा पाप लदे पापे पासारा पर हर आप पछाणे आप ना तिस सोग विजोग संताप नर कपड़ां तो क्यों रहे क्यों बंचे जम काल क्यों आवन जाना विसरै झूठ बुरा खै काल मन जंजाली बेड़िया पी जंजाला माहे बिन नावे क्यों छुटिए पापे पचे पचाहे फिर फाही फासे कौआ फिर पछथाना अब क्या हुआ फाथा चोग चुगे नहीं बुझे सतगुर मिले ता आखी सूजे ज्यो मछली फाथी जमजाल बिन गुरदा ते मुक्त ना पहाल फिर आवे फिर जाए इक रंग रचे रहे लिवलाए इव छूटे फिर फास न पाए बीरा बीरा कर रही बीर पै बैराए बीर चले कर अपने बहन बिरह जल जाए बाबल कह कर बेटड़ी बाली बाल नेह जे लोड़ है वर कामणी सतगुर से ते बिरलो ज्ञानी बुझणो सतगुर साच मिले ना ठाकुर हथ बढ़ाइया जय पावे तै दे बाणी बिरलो भी जा विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए पन पन घड़िए घड़ घड़ भजे ढाहे सारे उसरे ढाहे सर पर सोखे पी पर सुपोख समरथ वे परवाह परम पलाने पै दीवाने बिन पागा क्या पाईए गुरमुख ज्ञान डोरी प्रभ पकड़ी जिन खिंचे तिन जाइए हर गुण गाए सदा रंग राते बहुड़ न पछो ताइए पब्बे पाले गुरमुख बूझे ता निज कर वासा पाइए पब्बे पौजल मार्ग विखड़ा आस निरासा तरिए गुर प्रसादी आपो चीने जीव त्या इव मरिए माया माया कर मुए माया किसे न साथ।

राम कबीरा एक पए है कोई न सकै पछानी संता मान्यो दूता डान्यो एक टवारी मेरी दिवस रैन तेरे पौ पलोसो केस चवर कर फेरी हम कुकर तेरे दरबारे पौके आगे बदन पसार रहो पूर्व जन्म हम तुमरे सेवके अब तो मिटया न जाए तेरे द्वारे तुन सहज की माथे मेरे जगाए दागे होहे सूरन मैं जूझे बिन दागे पग जाई साधु होए ता भगत पछाने हरे ले खजाने पाई कोठरे मैं कोठरी परम कोठी बिचारी गुरे दिनी बस्त कबीर को ले वो बस्त समार कबीर दे संसार कोलीनी जिस मस्तक भाग अमृत रस जिन पाया थिर तांको सुहाग जय मुख बेद गायत्री निकसे सो क्यों ब्राह्मण बिसर करे जाके पाए जगत सब लागे सो क्यों पंडित हर ना कहे काहे मेरे बामन हर ना कहे राम ना बोले पांडे दो जिके परे रहो आपने ऊंच नीच कर भोजन हठे कर्म करे उधर परे है चौदस अमावस रच रच मांगे कर दीपक लै कूप परे तू ब्राह्मण मैं कासीक जलाहा मुँह तोहे बराबरी कैसे कै बने हमरे राम नाम कै उबरे बेद परोसे पांडे डूब मरहे तरवर एक नंत डार साखा पहु पत्र रथ परिया ए अमृत की बारी है रे तिन हरे पूरे करिया जानी जानी रे राजा राम की कहानी अंतर ज्योत राम पर गासा गुरमुख बिर लै जानी रहो पवर एक पोह परस बीदा बारह लै उर धरिया सो रहमद पवन चकोरिया अकाशे फर फरिया सहज सुन एक बिरवाजा उपजया धरती जल हर सोखिया कै कबीर हउतां का सेवक जिने बिरवा देखिया मुंदरा मोन दया कर झोली पुत्र का करो विचार रे खिंता ए तन स्यो अपना नाम करो आधार रे ऐसा जोग कमावो जोगी जप तप संजम गुरमुख भोगी रहो बुद्ध बबूत चिड़ावो अपनी सिंगे सुरत मलाई कर बराग फिरियो तन नगरी मन की किंगरी बजाई पंच तातला हिरदे राखो रहे नरालम तारी कहत कबीर सुनो रे संतो धर्म दया कर बारी कवन रा काज सिरजे जग भीतर जन्म कवन फल पाया पाव निज तरन तारन चिंतामन एक निमख ना ए मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी पौ भगत नहीं सादी रहो पर तन पर तन पर थी निंदा पर अपवाद ना छूटे आवागमन होत है फुन फुन ए प्रसंग न टूटे जेकर कथा होत हर संतन एक निमख ना कीनो मैं फेरा लंपट चोड़ दूत मतवारे तिन संग सदा बसेरा काम क्रोध माया मद मत सारे ए संपे मो माही दया धर्म और गुर की सेवा ए स्वपन अंतर नाही दीन दयाल कृपाल दमोदर भगत विशाल पहारी कहत कबीर पीर जन राखो हर सेवो सेवा करो तुम्हारी जय सिमरन होए मुक्त द्वार जाहे बखंट नाही संसार निरपौ के कर बजावे धूर अनहद बजै सदा भरपूर ऐसा सिमरन कर मन माही बिन सिमरन मुक्त कत नाही रहो जे सिमरन नाही ननकारी मुक्त करे उतरे बहु पार नमस्कार कर हिरदे माही फिर फिर तेरा आवन जाना है जे सिमरन करे तू केल दीपक बांध तरे ओबन तेल सो दीपक अमरक संसार काम क्रोध बेका डीले मार जे सिमरन तेरी गत हुए सो सिमरा कंठ परोए सो सिमरन कर नहीं राख उतार गुर प्रसादी उतरे पार जे सिमरन
नाही तू कान मंदर सोव है पटंबर तान सेख सुखाली बिकसे जियो सो सिमरन तू अनदन पियो जे सिमरन तेरी जाए बलाहे जय सिमरन तुझ पोहे न माई सिमर सिमरे हर हर मन गाइया ए सिमरन सतगुर ते पाइया सदा सदा सिमर दिन रात उठत बैठत सास ग्रास जाग सोए सिमरन रस भोग हर सिमरन पाइया संजोग जे सिमरन नाही तुझ पार सो सिमरन राम नाम आधार कह कबीर जा का नहीं अंत तिसके आगे तंत न मंत राम कली कर दूजा बाणी कबीर जी की एक ओंकारी सतगुर प्रसाद बंद च बंधन पाया मुक्त गुर अनल बजाया जब नक सिख एह मन चीना तब अंतर मंजन कीना पवन पाते उन मन रहन खड़ा नहीं मृत ना जन्म जड़ा रहो उल्टी लै सख्त सहारंग पैसीले गगन मजारंग बेदी आले चकर पयंगा पेटी आले राय निसंगा चुकी आले मोहे मयासा सास कीनो सुर गिरासा जब कुंभक पीनो सुर गिरासा जब कुंभक परपुर लीना तै बाजे अनहत बीना बगते बक शब्द सुनाया सुनते सुन मन बसाया कर करता उतरस पारंग कहे कबीरा सारंग चंद सूरज दी ज्योत स्वरूप ज्योति अंदर ब्रह्म अनूप करो रे ज्ञानी ब्रह्म विचारी ज्योति अंतर तरिया पसारे रहो हीरा देख हेरे को आदेश कहे कबीर नरंजन आलेख दुनिया होशियार बेदार जागत मुशियत होरे पाई निगम होशियार पहुर रया देखत जम ला जाई रहो नींब पयो आंब आंब पयो नींबा केला पाका चारे नाली एर फल सेबर पाका मूरख मुगद गवारे हर पयो रखांड रेत मैं बिखरियो हस्ती चुनियो ना जाई कह कमीर कुल चांत पांत तज चींटी हुई चुन खाई बाणी नाम दियो जी की राम कली कर पहला एक ओंकारी सतगुर प्रसाद नीले कागद काटी ले गुडी आकाश मदे पर मायले पंच जना सो बात बतौआ चीद सु डोरी रख अले मन राम नामा बेदी अले जैसे कनकला चित मांडी अले रहो अनीले कुंभ पराईले उदक राजकुआर पुरंदरिये हस्त बनोद विचार करती है चीत सुगागर रखी अले मंदर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छाड़ी अले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सुबछड़ा राखी अले कहत नाम देव सुनो तरलोचन बालक पालन पाउडी अले अंतर बाहर काज बरूदी चीत सुबारक राखी अले वेद प्राण शस्त्र अनंता गीत कबत ना गाओ गो खंड मंडल निरकार मैं अनहद बेन बजाओ गो बैरागी राम में गाओ गो शब्द अतीत अनहद राता अकुल के कर जाओगे रहो ईड़ा पिंगला और सुखमना पौने बंद रहाओ गो चंद सूरज दुई सम कर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो तीर्थ देख ना जल मैं पैस्यो जी जंत न सताओगो अड़सर तीर्थ गुरु दिखाए कट ही पीतर नहाओगो पंच सहाई जन की शोभा पलो पलो न कहाओगो नामा कहे चित हर स्यों राता सुन समाध समाओगो माई न होती बाप न होता कर्म न होती काया हम नहीं होते तुम नहीं होते कवन कहां ते आया राम कोई ना किस ही केरा जैसे तरवर पंख बसेरा रहो चंद ना होता सूर ना होता पानी पवन मिलाया शास्त्र ना होता वेद ना होता कर्म कहां ते आया खेचर पूचर तुलसी माला गुर प्रसादी पाया नामा पर नवे परम तत है सतगुर होए लखाया राम कली कर दूजा बनारसी तप करे उल्ट तीर्थ मरे
अगन दहे काया कल्प कीजै।